0: up सुनिए और दोहराइए.
1: सशिमी वा तबेरारे मासेन. वाताशि सशिमी वा तबेरारे मासेन. सुमिमासेन. वाताशि सशिमी वा तबेरारे मासेन.
2: अब ना खा सकने वाली कुछ और चीजों के साथ मश्क करते हैं. मसलन आप झींगा नहीं खा सकते, तो ये बात किस तरह कहेंगे? झींगे की जापानी है
1: एबी. एबी.
2: सुमिमासेन के साथ कहने की कोशिश करें.
3: सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारे मासेन. सुमिमासेन, वाताशी एबी वा तबेरारे मासेन.
2: अब यही जुमला खिंजीर के गोश्त के बारे में कहने की मश्क करें. खिंजीर के गोश्त की जापानी है
1: बुतानिक. बुतानिक.
4: सुमिमासेन, वाताशी बुतानिक वा तबेरारे मासेन. सुमिमासेन, वाताशी बुतानिक वा तबेरारे मासेन.
0: अनवर साहब, क्या तबेरारे मासेन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी नापसंदीदा चीज के लिए किया जाता है?
2: जी नहीं, अगर आप तिब्बी, मजहबी या किसी और वजह से कोई चीज नहीं खा सकते तब भी तबेरारे मासेन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये बहुत कारामद है. और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर. आज का लफ्ज मकालमे में ताम और काइतो ने इस्तेमाल किया है, इसे याद कर लें.
5: इतादाकिमास.
2: जापानी जबान में, बल्कि यूं कह लें कि जापानी सकाफत में, खाना शुरू करते वक्त इतादाकिमास कहा जाता है. ये उस खाने या खुराक की तैयारी से मुंतलिक तमाम अफराद के लिए शुक्रगुजारी के साथ साथ खुद खुराक के लिए अदब का इजहार है. खाना ख़त्म करने के बाद गोचिसो समादिश्ता कहा जाता है. इन दोनों इस्तलाहात इतादाकिमास और गोचिसो समादिश्ता को एक साथ याद कर लेना बेहतर होगा.
0: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुनिए.
6: इतादाकिमास. गोचिसो समादिश्ता.
7: इतादाकिमास. गोचिसो समादिश्ता.
0: सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए.
1: इतादाकिमास. गोचिसो समादिश्ता.
0: जापानियों के साथ खाना खाते वक्त अगर आप ये इस्तलाहात इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके साथ उनसियत महसूस करेंगे.
2: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं. उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें ताम ने कोई चीज ना खा सकने की बात की है.
8: निहोन शोकु वा केंको नी ई इन देसु यो.
9: कोरे नमा तमागो देसु का?
8: हाई.
9: सुमिमासेन, वाताशी 生卵は食べられません.
10: そう。じゃあ納豆もダメ？
9: 納豆大好きです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: アラブ食の消費カイトの食のコーナー。明日のモズジャパニーナシタ。
2: キラ、ジャパニーナシタでお口の中にどんなナシタが来る？
0: उबले हुए चावल, मिसो सूप और भुनी हुई मछली वगैरह, यानी बिल्कुल इस सबक के मकामे वाला मंजर.
2: आपने रिवायती जापानी नाश्ते की बिल्कुल दुरुस्त मंजरकशी की है. बाज़ लोग खमीर लगे हुए सोयाबीन से तैयार करदा नत्तो, खुश्क खुर्दनी समुद्री नबातात, आलूचे का अचार या अंडे भी खाते हैं. आज के मकालमे में कच्चे अंडे का जिक्र था, लेकिन जापानी अंदाज का आमलेट भी आम है.
0: वैसे आजकल जापानी लोग मगरबी अंदाज का नाश्ता भी तो करते होंगे.
2: जी बिल्कुल, आजकल डबल रोटी, तले हुए अंडे, फलों के जूस और चाय या कॉफी वाला नाश्ता भी काफी आम है.
0: तो यहाँ के होटलों में किस किस्म का नाश्ता मिलता है?
2: जापानी अंदाज की सराय में तो आमतौर पर रिवायती जापानी नाश्ता होता है, लेकिन होटलों में ग्राहक आमतौर पर जापानी या मगरबी अंदाज के नाश्ते में से इंतखाब कर सकते हैं. कई होटलों में बुफे सर्विस भी होती है जिसमें मुकर्रर पैसों में जो मर्जी और जितना मर्जी चाहे खा सकते हैं.
0: फिर तो मेरे लिए बुफे सर्विस बेहतर है. इसमें जापानी और मगरबी दोनों अंदाज की चीजें खाई जा सकती हैं.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 11 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान चानहुम अब जापान की ओर बढ़ रहा है और मंगलवार शाम को टोक्यो सहित खांतो क्षेत्र से टकरा सकता है। मौसम विशेषज्ञों ने पूर्वी और पूर्वोत्तरी जापान में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। बुधवार सुबह तक के 24 घंटों में तोहोकू क्षेत्र में अधिकतम 180 मिलीमीटर, खांतो कोशिन क्षेत्र में 150 मिलीमीटर और प्रशांत महासागर स्थित इजू द्वीपों में 100 मिलीमीटर वर्षा होने का अनुमान है। इस तूफान के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। तोहोकू और खांतो कोशिन में मंगलवार को अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूस्खलनों, निचले इलाकों में बाढ़, नदियों में उफान, तेज हवाओं और ऊंची लहरों के प्रति चेतावनी जारी की है। एजेंसी के अनुसार बवंडर जैसी तेज हवाओं और वज्रपात की भी आशंका है। तूफान असामान्य मार्ग पर चलते हुए पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। एजेंसी के अधिकारियों के अनुसार तूफान की दिशा को देखें तो इससे खांतो और तोहोकू के तटों पर हवा की चाल असामान्य हो सकती है और अचानक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जापान की ओर आने वाले तूफान आमतौर पर पश्चिमी हवाओं के दबाव में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को 2 सप्ताह बीत चुके हैं और वहां 6,000 से अधिक लोग अब भी आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। 28 जुलाई को आए भूकंप से कुमामोतो के कुछ इलाकों में 7 की तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जो जापान के भूकंप मापी पैमाने पर सर्वाधिक स्तर है। सोमवार तक भूकंप से 39 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी थी, जिनमें आपदा संबंधी कारणों से मारे गए लोग भी शामिल हैं। भूकंप से 22,000 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 699 मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। यात्सुशिरो और उकी शहरों तथा हिकावा नगर में लगभग 34,000 घरों में जलापूर्ति अब तक ठप है। उम्मीद है कि इस माह के अंत तक सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बहाल हो जाएगी। एनएचके के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए के मंत्रिमंडल की समर्थन दर पिछले महीने की तुलना में 5 अंक गिरकर 53% हो गई है, जो पिछले साल गठन के बाद से सबसे कम है। वहीं असमर्थन दर 6 अंक बढ़कर 33% हो गई है। एनएचके ने शुक्रवार से रविवार तक टेलीफोन सर्वेक्षण किया। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के 2,925 लोगों से संपर्क किया गया, जिनमें से 1,205 ने जवाब दिया। सर्वेक्षण में 28 जुलाई को जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर कुमामोतो में आए महाभूकंप के बाद सरकारी कदमों के बारे में भी पूछा गया। 11% लोगों ने कहा कि वे सरकारी प्रतिक्रिया की बहुत सराहना करते हैं, जबकि 56% ने कहा कि वे कुछ हद तक सराहना करते हैं। 21% ने कहा कि वे प्रतिक्रिया की उतनी सराहना नहीं करते और 6% ने कहा कि वे बिल्कुल भी सराहना नहीं करते। मंत्रिमंडल ने हाल में एक सरकारी योजना को

मंजूरी दी थी, जिसके तहत अगले साल अप्रैल से 2 साल के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर की दर घटाकर 1% कर दी जाएगी। इसके अलावा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को भत्ता भी मिलेगा, जिससे खाद्य पदार्थों पर उनके लिए कर का भार लगभग शून्य हो जाएगा। कुल मिलाकर 49% लोगों ने कहा कि वे इस नीति का समर्थन करते हैं, 39% ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं और 12% ने कहा कि वे नहीं बता सकते या उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संसद ने शाही परिवार के सदस्यों की पर्याप्त संख्या बनाए रखने के लिए संशोधित शाही घराना कानून पारित कर दिया है। जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि संशोधन को जनता का समर्थन मिला है, तो 3% ने कहा कि इसे पर्याप्त समर्थन मिला है, जबकि 26% ने कहा कि कुछ हद तक मिला है। 41% ने कहा कि संशोधन को ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है और 23% ने कहा कि इसे बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिला है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में निर्मित जीपीएस उपग्रह मिचिबिकी को मंगलवार सुबह सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जापान के दक्षिण पश्चिमी प्रीफेक्चर खागोशिमा के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से मिचिबिकी संख्या 7 उपग्रह ले जाने वाला H-3 रॉकेट जापानी समयानुसार सुबह करीब 4 बजे प्रक्षेपित किया गया। रॉकेट ने ऊपर जाते हुए 2 बूस्टर और पहले चरण को अपने से अलग किया। प्रक्षेपण के लगभग 29 मिनट बाद रॉकेट ने उपग्रह को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। मिचिबिकी उपग्रह जीपीएस की तरह पोजीशनिंग सिग्नल भेजते हैं। मिचिबिकी के 5 उपग्रह वर्तमान में जापान के ऊपर अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे हैं। ये स्मार्टफोन के लिए बेहतर स्थिति संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं और उन क्षेत्रों में भूकंप की चेतावनी पहुंचाने में मदद करते हैं जहां नेटवर्क कमजोर है। जापान सरकार अधिक आत्मनिर्भर घरेलू जियो लोकेशन सिस्टम हासिल करने के लिए शुरू में कुल 7 मिचिबिकी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना चाहती थी, लेकिन पिछले वर्ष H-3 रॉकेट का प्रक्षेपण नाकाम रहा, जिससे मिचिबिकी संख्या 5 उपग्रह नष्ट हो गया। सरकार अब इस सिस्टम को 6 उपग्रहों से संचालित करना चाहती है, जो प्रारंभिक योजना से 1 कम है। जापान ने इस वर्ष की पहली छमाही में रिकॉर्ड चालू खाता अधिशेष दर्ज किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अधिशेष लगभग 174.3 खरब येन यानी करीब 110 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। 1985 में तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध होने के बाद से पहली छमाही के लिए ये रिकॉर्ड स्तर है। इसका मुख्य कारण विदेशों में जापान की सहायक कंपनियों से लाभांश आय में वृद्धि और सेमीकंडक्टर तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जों के निर्यात में बढ़ोतरी रही। चालू खाता देश के बाहर व्यापार और निवेश से होने वाली आय का एक प्रमुख मापक है। इस बीच जून में मासिक चालू खाते में 92.3 अरब येन यानी लगभग 58.3 करोड़ डॉलर का घाटा दर्ज किया गया, जो पिछले साल जनवरी के बाद से 17 महीनों में पहला घाटा है। इसका एक कारण जापान आने वाले यात्रियों की संख्या में कमी से यात्रा खाते के अधिशेष में गिरावट रही। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।